0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास चांदनी रातें, चांदनी रातें।
0: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: ससिकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम जियो बिंदास।
4: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने। जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Hi everyone, this is Benny Deol here.
2: Benny Deol here.
1: Olive Radio 106.3.
2: Jio Bindas,
1: Jio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: song. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय देयर फ्रेंड्स, दिस इज डीजे सुकेत। You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: हाय गाइस, दिस इज अबार्शति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ऑलिव।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी।
2: रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर वन।
1: यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव, आई एम नंबर वन।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास। ओ प्रिया, जब जब तू मेरे सामने आती है मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। तू मेरा प्यार, मेरी पूजा, मेरी जिंदगी है। आ देख, देख तू मेरा पागलपन, कि मैं हर चेहरे में तेरा चेहरा तलाश करता हूं। ये मुझे क्या हो गया है, क्या कहूं, बस तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे।

रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस।
1: रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पाडवी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi, this is Air Rahman. Air Rahman. Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
4: Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: Cool Song.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
0: Cool Song.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को कीजिए सर्टिफाइड, बनिए सर्टिफाइड के साथ बनिए।
2: ग्रो योर ब्रांड अक्रॉस कतर्स की ऑडियंसेस, कनेक्ट विद हिंदी लिसनर्स ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मलयालम ऑडियंसेस ऑन रेडियो सुनो 91.7 FM एंड अरबिक लिसनर्स ऑन तत्कार 107.4 FM। ऑन एयर विजिबिलिटी सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, सिंपल इफेक्टिव इंटीग्रेटेड। कॉल 3009-1063 और 3082-1063।
3: Hi, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
4: Olive सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: जी बाऊजी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है आपका फेवरेट टिकटॉक।
1: टिकटॉक
0: वेलकम जी, वीकेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी कशिश शो, आपके लिए टिकटॉक लेकर आ गई 106.3 रेडियो पर। एंड वीकेंड के चलते बहुत सारी गप शप करने वाले हम, बहुत सारी चुगलियां करने वाले हम, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब कुछ टेक्नोलॉजी के आसपास हो। हाँ जी, सीरियल्स की बातें सब लोग करते हैं, मूवीज की बातें सब लोग करते हैं, एंड करंट अफेयर्स की बातें भी सब लोग करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात कौन कौन करता है? कोई करे ना करे, आपकी ये जो दोस्त है कशिश, ये रेडियो ऑलिव पर जरूर आपसे करने वाली है। सो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बातें जो है वो हम करने वाले हैं। सो बस आपको स्टे ट्यून रहना, एकदम चिपक के अपने रेडियो सेट से बैठे रहना है, अमेजिंग वाले गानों के साथ, अमेजिंग अपडेट जो है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। अब 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर आप मुझसे बातचीत जो है वो कर सकते हैं। बाकी आपको मेरा शो कैसा लगता है वो भी आप बता सकते हैं इसी नंबर पर 3311063 पर। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आप इंजॉय करो, थोड़ी सी देर में आती हूँ एक टेक्नोलॉजी वाले फैक्ट से। आज के शो की शुरुआत करते हैं, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: Hi, I'm Suhali Khan. And you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.
3: I'm in number one, Radio Olive.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: J-E-C-A.

दो को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

बचपन में ना मुझे हिंदी में पढ़ाया गया था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी जब जरूरत होती है तो इन्वेंशंस किए जाते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं सही है। एंड इसका एक एग्जांपल है वेबकैम। हां जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूं आपकी कसुस, एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूं। एंड वीकेंड पर जो है हम टेक्नोलॉजिया की जरा बातें जो है वो कर रहे हैं, एंड एक अमेजिंग वाला फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूं। तो कई बार कई इन्वेंशन जो है वो जरूरत के चलते तो होते ही हैं, लेकिन कई बार आलस के चलते भी हो जाते हैं। हाँ जी, तो जो वेब कैम जो अब आप टीम्स पे मीटिंग करने के, गूगल मीट पे मीटिंग करने के, या जिस टेक्नोलॉजी ने हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए इतना ईज दे दिया, या फिर हमारे ऑफिस की मीटिंग्स को इतना इंटरैक्टिव बना दिया, वही वेबकैम जो है वो आलस की वजह से इन्वेंट हुआ था। हाँ जी, लेजीनेस का नतीजा है वेबकैम। सो होता ये था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो है उसमें एक कॉफ़ी का जार था, एक कॉफ़ी की मशीन थी जिसमें कॉफ़ी भरी जाती थी। एंड क्या होता था कि बहुत दूर दूर से दूर मतलब यूनिवर्सिटी के हर कॉर्नर से वहाँ पर कॉफ़ी पीने लोग आते थे। लेकिन क्या हो गया था कि वो जार खाली हो जाता था, एंड जब लोग आते थे इतनी दूर से चल के, फिर वो डिसअपॉइंटेड हो जाते थे कि यार ये तो जार खाली है, अब वापस जाना पड़ेगा। सो वेब कैम जो है इतना चलना जो है अवॉइड करना पड़े, बस इसीलिए उस जार के सामने कैमरा लगा दिया गया जिसे एक्सेस कर सकते थे लोग अपने डेस्कटॉप से, और ये देख सकते थे कि वो जो जार है कॉफ़ी का वो भरा है या नहीं भरा है। और ये टेक्नोलॉजी 1991 में जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आई थी। अब देखिए आलस जो है वो कितनी बढ़िया चीज़ है। वैसे ये देखो, ये कॉन्सेप्ट ना इंडिया में भी लॉन्च हो सकता था, क्योंकि अक्सर हम ना गैस पे दूध को उबलता हुआ छोड़कर चले जाते हैं कुछ काम करने, एंड हर थोड़ी देर में आके हमें देखना पड़ता है, और बस वो एक बार जब आप सोचते हो कि यार नहीं यार अभी नहीं, अभी थोड़ी ना उबला होगा, उसी वक्त उबल के पूरी गैस ख़राब कर देता है। बस हम इंडियंस ने जो है दिमाग नहीं लगाया। मैं हूँ आपकी कसुस, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून रही और कहते रहिए जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

पिछले आई थिंक 4-5 दिनों से या पिछले एक हफ्ते से हम हर रोज बात कर रहे हैं GTA 6 की कि फाइनली कितना इंतजार करने के बाद ये गेम अब लॉन्च हो चुका है लेकिन मेरी कतर की जनता थम जाओ रुक जाओ एक खबर जो है आपके लिए भी आ गई है वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश शो आपके लिए जो है टेक टॉक लेकर आ गई हूं एंड GTA 6 जो है वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो रहा है कतर में यानी अगर आपको प्री बुकिंग करनी है तो आप कतर में नहीं कर सकते अभी कतर में लॉन्च नहीं हुआ है बाकी आगे इस गेम के मेकर्स जो हैं वो क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त के साथ पता चलेगा खैर कोई बात नहीं अभी तो वैसे भी प्री बुकिंग शुरू हुई है आ जाएगा टाइम के साथ आप परेशान मत हो आप अमेजिंग वाले गाने सुनो 106.3 रेडियो ऑल पर आपकी कशिश के साथ ऑन द शो टेक टॉक कहते रहो जियो बिंदास

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
3: इन एसोसिएशन विद।
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
5: जी ई सी ए।

ये जो हमारी वर्क डेस्क पे 24 घंटे क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक करने वाला माउस है ना, इसका शेप भी वक्त के साथ बदलता जा रहा है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूं आपकी कसूसन शो, आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूं। एंड वीकेंड पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते करते मेरी खोज पहुंच गई कि आखिर ये जो हमारा माउस है इसे किस तरीके से डिजाइन किया गया था एंड बनाया गया था। सो अगर मैं बात करूं माउस की, तो अभी जो हमारे माउस है ना, ये दिन ब दिन पतले होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी जिम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मैं जो है जिम सीरियसली जाऊं या ना जाऊं ये जरूर जा रहे हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट माउस है वो ना लकड़ी का बनाया गया था 1964 में डगलस जी के द्वारा, जिन्होंने ना फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाया था, जो एक हॉलोड मतलब एक हॉलोड बॉक्स था, वुडन बॉक्स था। एंड उसमें जो है दो मेटालिक व्हील्स थे। अब तो खैर ऐसे माउस आ गए हैं जिनमें डिजिटली एक सेंसर होता है, वरना पहले अगर आपने मैकेनिकल जो हमारा माउस होता है वो यूज़ किया, तो उसमें एक बॉल होती थी मेटल की, जिससे मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता था। वो है, अब तो खैर टच पैड आ गया है, टच स्क्रीन आ गया है, माउस धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। लेकिन जो कम्फर्ट माउस यूज़ करने में ना, मुझे नहीं लगता कि वो टच स्क्रीन या टच पैड यूज़ करने में। मैं तो अभी भी अपने लैपटॉप में ना एक ब्लूटूथ वाला यानी वायरलेस वाला जो माउस है उसे कनेक्ट करके रखती हूँ। मैं हूँ आपकी कसूस, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, आके बात करेंगे एप्पल की, सेब की नहीं, एप्पल आईफोन वाले एप्पल की। स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
3: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

यार ट्रेंड शुरू करने के लिए जो है किसी इंस्पिरेशन लेनी हो तो आईफोन वाले से लो, एप्पल वालों से लो, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड टेक टॉक लेकर जो है वापस आ चुकी हूँ एंड अब हम बात करने वाले हैं एप्पल की। सो आईफोन का जो सबसे पहला फ़ोन था उसमें उन्होंने ना पेटेंट जो डिज़ाइन करवाया था वो एक रेक्टेंगुलर टच स्क्रीन फ़ोन का तो बिल्कुल भी नहीं था, वो एक फ्लिप फ़ोन था जो एक एप्पल की तरह दिखता था और जब उसे बंद करते थे तो एप्पल का लोगो बन जाता था। कितना कूल होता ना ये। और मुझे तो ये कहना है कि यार एक काम करो ना, एप्पल अभी ये लॉन्च कर दो। वैसे भी हम जो जेंजीज हैं ये बारबी फ़ोन और ये फ्लिप वाले फ़ोन तो ले ही रहे हैं, सो एक एप्पल का ये वाला फ़ोन ले लेंगे, मेरा सेल्फी लेने में मज़ा आएगा। आप बताइए, आप ये वाला एप्पल शेप का एप्पल आईफोन जो है ये लोगे या नहीं लोगे? 3311063 ये नंबर है, इस पर आकर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फिलहाल और बहुत सारी बातें करनी है लेकिन उससे पहले अमेजिंग वाले गाने इंजॉय करते रहो और कहते रहो आपकी कशिश के साथ जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूफ करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
2: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: TECP

eBay नाम की एक शॉपिंग साइट है उसे तो आप जानते ही होंगे वहीं से शुरुआत हुई थी ऑनलाइन शॉपिंग की वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई जहां पे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी अमेजिंग बातें जो है वो हम करते हैं सो, अगर हम ईबे पे सबसे पहले बिकने वाला सामान उसकी बात करें आपको भी कभी कभी लगता होगा ना कि यार सबसे पहला कौन सा सामान है जो बिका होगा सो बस मैं आपको वही बताने की लाइन सो 1995 में जो ईबे के फाउंडर हैं उन्होंने एक ब्रोकन लेजर प्रिंटर को जो है $14 में टेस्ट करने के लिए साइट पे डाला था एंड वो आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि एक बायर ने ये जो लेजर प्रिंटर है खरीद भी लिया तो फिर उन्होंने ना ईमेल लिखा स्पेशली इस बायर को कि क्या आपको समझ आया था कि ये जो लेजर प्रिंटर है ये ब्रोकन है और बायर ने जो है रिप्लाई किया था आई एम अ कलेक्टर ऑफ ब्रोकन लेजर प्रिंटर्स तो बस यहीं से शुरू हुई आपके ऑनलाइन शॉपिंग करने की जर्नी सोचिए अगर वो लेजर प्रिंटर जो है जो टूटा हुआ था ब्रोकन था अगर उसे नहीं खरीदते तो आज हम अभी तक जो है मतलब ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं कर रहे होते मैं हूँ आपकी कशिश मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

ये जो QR कोड आजकल आप पेमेंट करने के लिए यूज करते हो, मेन्यूज देखने के लिए जो है यूज करते हो, या किसी सामान के बारे में इंफॉर्मेशन देखने के लिए यूज करते हो, ये पहले ना ऐसे यूज नहीं होते थे। ये एक गेम से इंस्पायर्ड है। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई हूँ। अब हम बात करने वाले हैं QR कोड की। सो ये जो QR कोड है, जो डब्बा आप बने हुए देखते हो जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट यू नो पैटर्न बना होता है, जिसे आप स्कैन करके इन्फॉर्मेशन लेते हो, मेन्यू देखते हो, कई बार पेमेंट करते हो, ये एक गेम से इंस्पायर्ड है। एंड ये QR कोड जो है 1994 में ऑटोमोटिव जो पार्ट्स होते हैं ना उनको ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड उसके बाद बोर्ड गेम से जो है इंस्पायर होकर इसको फिर लॉन्च किया गया। एंड अब ये मतलब मैं इस QR कोड के बिना अब लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। कितनी सारी चीज़ों को इसने जो है अब गायब सा कर दिया है कि हम बता ही नहीं सकते। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल पर। मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड रहिए, अमेजिंग वाले गाने एंजॉय करते रहिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Welcome, Eddie. अपना ही गराज है।

चलिए जी, वीकेंड बना के आपके साथ बहुत मजा आया, लेकिन अब वक्त हो गया है यहाँ से जाने का एंड मुस्कान को बुलाने का। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल ओवर शो टेक टॉक, आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ से जाती हूँ। आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए और मुझे भी जो है अपना वीकेंड एंजॉय करने दीजिए। आप मुस्कान के साथ जरा अपनी इवनिंग को जो है हैप्पी बनाइए, अपने वीकेंड को जो है और ज्यादा हैप्पी बनाइए। तो मैं यहाँ से चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, स्किन को भी जो है ठीक रहिए, स्किन केयर कीजिए। एंड देखिए कल जो है सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलना बिल्कुल मत भूलना। मुलाकात होगी कल 10 बजे लाइफ मस्त है में। सो स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव।
3: In association with
2: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
2: Your trusted remittance partner. Aap sun rahe hain Qatar ka number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

हाय, गुड इवनिंग. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. आदाब, नमस्ते और एक खूबसूरत सी फ्राइडे इवनिंग मुबारक हो. मैं हूँ मुस्कान और अगले तीन घंटे हम साथ में बहुत सारी नई नई बातें करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं वीकेंड को और उस फीलिंग को जिसका इंतजार हम पूरे हफ्ते करते हैं. वैसे एक बात नोटिस की आपने, फ्राइडे का अलार्म ही अलग प्यारा सा लगता है. कॉफ़ी भी थोड़ी सी टेस्टी लगती है और कतर की रोड्स भी आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आती हैं. थर्सडे रात से ही सिटी का जो मूड है वो चेंज होना शुरू हो जाता है. सूख वाकिफ में फैमिलीज, द पर्ल पर इवनिंग वॉक्स, लुसेल में यंगस्टर्स कैफे में करक और कॉन्वर्सेशंस, और मॉल्स में शॉपिंग बैग्स के साथ स्माइलिंग फेसेस. भाई आजकल तो सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी सेल चल रही है, और ये देख देख कर मैं सारे मॉल्स चली जाती हूँ. और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि फ्राइडे सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं होता, फ्राइडे इज एन इमोशन यार. पूरे हफ्ते हम मीटिंग्स, डेडलाइंस, ऑफिस और रूटीन में बिजी रहते हैं, और फिर ये दो दिन जो है हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ सिर्फ काम का नाम नहीं है. इसीलिए आज का शो भी बिल्कुल वीकेंड जैसा ही होने वाला है. थोड़ा सा फुटबॉल, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा खाना और बहुत सारी बातें सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: फुटबॉल सिर्फ जीत और हार का गेम तो होता नहीं है, फुटबॉल इमोशंस का गेम होता है। और कल फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कतर ने बॉस्निया एंड दूसरी टीम्स के अगेंस्ट अपने ग्रुप बी का इंपॉर्टेंट मैच खेला था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है यस हैप्पी वीकेंड्स। सो यहाँ पर मैच में 3-1 से जीत मिली थी बॉस्निया को और इस रिजल्ट के साथ कतर का वर्ल्ड कप कैंपेन जो था वो खत्म हो गया। सो स्कोर लाइन देखकर कहानी खत्म लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ साल पहले कतर फुटबॉल की ग्लोबल कॉन्वर्सेशन में इतना डिस्कस ही नहीं होता था, फिर एशियन कप चैंपियनशिप बने जहाँ पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया गया और आज हर मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट में एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर तो प्रोग्रेस है, लेकिन कभी कभी सक्सेस जो है वो ट्रॉफी से नहीं एक्सपेक्टेशन से मेजर हो जाती है। और फुटबॉल का सबसे ब्यूटीफुल लेसन भी यही है कि हर डिफीट एक ट्रेनिंग सेशन होता है नेक्स्ट विक्ट्री के लिए। यंग प्लेयर्स एक्सपीरियंस लेकर लौटेंगे और टीम और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी। सो अगर आप कतर नेशनल टीम के कोच होते तो सबसे पहले जो चेंज है वो किस चीज़ में करते? कोई यूथ डेवलपमेंट, कोई माइंडसेट, या फिर कुछ और जो आपको लगता है कि यार कुछ तो चीज़ें हैं जो अभी ये चीज़ और लेकर आनी चाहिए? सो मुझे यकीन है कतर फुटबॉल की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ सिर्फ एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: एक वक्त था पेरेंट्स कहते थे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब ले लो, लेकिन अगर आज कोई बच्चा बोले मुझे एआई इंजीनियर बनना है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बनना है, रोबोटिक स्पेशलिस्ट बनना है, तो शायद वो फ्यूचर की लैंग्वेज बोल रहा है। और इसी फ्यूचर को देखते हुए कतर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्लान के अंडर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। लेकिन मुझे इस न्यूज़ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या लगा? स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं, मुझे इंटरेस्टिंग लगा स्कॉलरशिप दैट एंड्स विद एम्प्लॉयमेंट, मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, करियर भी। और ऑनेस्टली फ्यूचर वही कंट्रीज लीड करेंगी जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज नहीं बल्कि क्रिएट करेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ये सिर्फ बस वर्ड्स नहीं है, ये कल की इकोनॉमी के पिलर्स हैं। और मुझे लगता है कि एजुकेशन का असली पर्पस भी यही होना चाहिए, स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना। आज का सवाल स्पेशली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आज आपको दोबारा करियर चूज करने का चांस मिले तो क्या आप वही प्रोफेशन चूज करोगे या एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाना पसंद करोगे? सोचिए और बताइए मुझे। नंबर है 3311063। ये है रेडियो ऑलिव और हम और आप मिलकर बात कर रहे हैं हैप्पी वीकेंड्स में।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडो ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
4: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
3: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

तो कल ही शाम को आ गया था और इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि रिमोट कंट्रोल की बैटरी चेक कर लो, क्योंकि फ्राइडे नाइट मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलेशनशिप ऑफिशियली आपका और उसका शुरू हो चुका है। भाई मेरा तो थर्सडे इवनिंग को स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कई सारे लोग थर्सडे को ऑफिस से सीधे बाहर दोस्तों से मिलते हैं, उसके बाद फ्राइडे को घर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपना जो ओटीटी का और अपना रिश्ता है वो बनाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कॉन्टेंट इतना ज़्यादा है कि आधा टाइम मूवी चूज करने में निकल जाता है। इसीलिए आज एक क्विक वीकेंड वॉच लिस्ट है, उसको बनाते हैं। अगर सस्पेंस पसंद है तो इस वीक मोस्ट टॉक्ड अबाउट थ्रिलर रिलीज जो है वो ज़रूर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फैमिली के साथ बैठकर कुछ देखना चाहते हो तो आप कुछ लाइट हार्टेड कॉमेडी फील गुड ड्रामा देखना चाहोगे, और अगर आप डॉक्यूमेंट्री लवर हो तो फिर मैं आपको बता दूं तो ट्रैवल और ट्रू स्टोरी बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज तो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं इस टाइम पर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। वैसे एक इंटरेस्टिंग सर्वे कहता है कि लोग एवरेज 15 से 20 मिनट सिर्फ ये डिसाइड करने में लगा देते हैं कि देखना क्या है। इमेजिन करो मूवी से पहले ट्रेलर से ज़्यादा मेन्यू। मतलब आज का सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर आप आज OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ देखना चाहोगे तो वो क्या होगा, एक्शन कॉमेडी रोमांस या थ्रिलर, या वो लोग जो हर वीकेंड बोलते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सो मैसेज करके बताइए 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो भाई बात करते हैं, एक सवाल पूछती हूँ बेसिकली। अगर मतलब एक फ्रूट ने हजारों लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया है तो वो है मैंगो। यस, सूक वाकिफ में चल रहा है इंडियन मैंगो एग्जीबिशन और इस साल भी रिकॉर्ड मतलब सारे टूट गए हैं। सिर्फ पहले 5 दिन में 84 टन आम जो थे वो बिक चुके हैं और 74,000 से ज्यादा लोग एग्जीबिशन को विजिट कर चुके हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। अब सोचिए एक फ्रूट इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है और शायद इसीलिए आम को सिर्फ किंग ऑफ फ्रूट्स नहीं कहते, ये इमोशंस का फ्रूट भी है। हर इंडियन के पास आम से जुड़ी एक कहानी है, समर हॉलीडेज, नानी का घर, फ्रिज में ठंडा आम और वो वार्निंग एक साथ इतने आम मत खाना। सबसे अच्छी बात कि कतर में बैठकर इंडिया से 35 से ज़्यादा ग्रोअर्स जो हैं वो अपनी बेस्ट वैरायटीज लेकर आए हैं, अल्फेंसो, केसर, दशहरी और पता नहीं कौन कौन से आम जिनके आपको नाम भी नहीं पता होगा और आप देखकर ही मतलब ऐसे हो जाओगे कि यार आम के साथ पानी पूरी कौन बनाता है यार, वहाँ पर है। और हर आम की अपनी पर्सनालिटी है। वैसे मुझे लगता है कि फूड सिर्फ टेस्ट नहीं होता, फूड ना मेमोरी होता है, एक बाइट और सीधा बचपन की याद। तो आज का सवाल भी आपसे यही है, अगर सिर्फ एक ही वैरायटी जिंदगी भर खानी हो तो कौन सी होगी आम की वैरायटी। और अगर एग्जीबिशन जाना है तो जल्दी जाइए क्योंकि पॉपुलर वैरायटीज रोज शाम तक सोल्ड आउट हो जाती है। क्या पता इस वीकेंड की स्वीटनेस जो है वो मेमोरी के साथ बन जाए। वैसे ये सिर्फ 27 जून तक ही है, सो आई थिंक कल लास्ट है। सो आप कहीं मत जाइए, सुन रहे हैं रेडियो ऑल ऑफ, ये है हैप्पी वीकेंड, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स की गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सो मैं ना आज सब आप सबको मतलब एक चैलेंज देना चाहती हूँ, और सिंपल सा चैलेंज है, जीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन गारंटी है कि वीकेंड यादगार बन जाएगा। चैलेंज ये है कि इस वीकेंड उस जगह पर जाइए जहाँ आप कभी नहीं गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च कहती है कि हम ह्यूमन ब्रेन जो है वो रूटीन को बहुत जल्दी बोरिंग डिक्लेयर कर देता है, इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम लाइफ नहीं होती, प्रॉब्लम रिपीट बटन होता है। हम हर वीकेंड सेफ कैफे, स्मॉल मॉल, सेम रोड, और फिर बोलते हैं कि वीकेंड तो पता ही नहीं चला यार। कदर में कितनी जगह हैं जो शायद आपने कभी मतलब प्रॉपरली एक्सप्लोर ही नहीं की होंगी। ओल्ड दोहा पोर्ट मैं तो मतलब बहुत गई हूँ स्टार्टिंग में, पर्पल आइलैंड मैं अभी तक नहीं गई हूँ, अलखुर, कॉर्निश, मीना डिस्ट्रिक्ट, ये फिर एक सिंपल सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस एक सनसेट ड्राइव भी आपको ना याद रह जाती है। और कभी कभी डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंपनी इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभी कंपनी भी ज़रूरी नहीं होती, खुद के साथ भी थोड़ा वक्त आप बिता सकते हो। और इस वीकेंड प्रॉमिस करिए कि एक नई जगह, एक नया एक्सपीरियंस और एक नई याद बनाकर ही आओगे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड। सुन रहे हैं, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
0: रेडियो

आपने कभी नोटिस किया है, पहले हम गूगल से आंसर पूछते थे, अब हम AI से आइडियाज पूछते हैं। पहले कैमरा फोटो लेता था, अब AI फोटो इम्प्रूव करता है। पहले मैप्स रास्ते बताते थे, अब AI ट्रैफिक प्रिडिक्ट कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम शायद पता भी नहीं चला कि AI ऑलरेडी हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। आज व्हाट्सएप, ऑफिस सॉफ्टवेयर, फोन्स, कार, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल AI क्या कर सकता है ये नहीं है, असली सवाल है कि हम AI के साथ क्या कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, उसका यूज प्रॉब्लम या सॉल्यूशन बन सकता है। एग्जैक्टली इसीलिए कतर भी डिजिटल फ्यूचर में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और आज के स्टूडेंट शायद वो जॉब्स करेंगे जिनके नाम आज हमें प्रॉपरली पता भी नहीं है। और यही एक्साइटिंग है यार, फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं होता, फ्यूचर क्रिएट होता है। और आज का सवाल है कि अगर AI आपकी लाइफ का एक काम परमानेंटली कर दे तो वो क्या होगा, मतलब ईमेल्स, कुकिंग या ड्राइविंग, कौन सी एक चीज़ है जो आप उसे करने के लिए कहेंगे फॉर लाइफ टाइम। मैं तो कहूँगी यार सारी मीटिंग्स जो है वो मेरी जगह AI ले ले। You are listening Radio Olive, stay tuned, Jio, Bindaas.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा coupon or mega draw ticket.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव.
2: In association with
1: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
3: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
1: your trusted remittance partner.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, हैप्पी वीकेंड्स. चलिए एक फन डिबेट करते हैं. नो राइट आंसर नो रॉन्ग आंसर, सिर्फ दिल की बात. क्वेश्चन ये है कि परफेक्ट कतर वीकेंड किस चीज़ से बनता है. टीम कॉफ़ी होगी, एक टीम करक होगी, एक तरफ एक्सपेंसिव कैफेज और दूसरी तरफ रोड साइड करक. और मैं बताऊँ अपने दिल की बात, कभी कभी ना 2 रियाल वाली वो करक जो है वो 200 रियाल की कॉफ़ी से ज़्यादा सुकून दे देती है. वैसे भी टेस्ट सिर्फ ड्रिंक से नहीं होता, टेस्ट कंपनी से होता है. और आज मतलब जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो देखा कि यार मतलब इतने सारे लोग जो हैं वो वीकेंड पे ना जाने कहाँ कहाँ की स्टोरीज डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे. सो लिखिए कॉफ़ी या करक और रीज़न भी बताइएगा कि क्यों आपको ये ज़्यादा पसंद है. 3311063 इज़ माय नंबर. और देखते हैं आज कतर टीम किस को विनर बनाती है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स। भाई हर साल नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, लेकिन इस साल एक और ट्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग है, एआई गैजेट्स, स्मार्ट रिंग्स, एआई ईयरबड्स, स्मार्ट ग्लासेस। क्वेश्चन ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट हो गई है, क्वेश्चन ये है कि क्या हम उससे स्मार्टर हो रहे हैं, मतलब हम उससे और स्मार्ट हो रहे हैं कि नहीं। टेक्नोलॉजी का पर्पस लाइफ को ईजी बनाना था, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम टेक्नोलॉजी को मैनेज करते करते बिजी हो गए हैं। नोटिफिकेशंस पे नोटिफिकेशंस, अपडेट पे अपडेट, और फिर डिजिटल डिटॉक्स भी करना पड़ता है यार। इसीलिए आज का चैलेंज ये है कि आज डिनर के वक्त जब आप रात को घर पर होगे या घर लौट रहे होगे डिनर करके, तो सिर्फ 30 मिनट के लिए फोन साइड में रख देना और देखिए कि कॉन्वर्सेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है या फिर इंस्टाग्राम। बाय द वे मैं सच बता रही हूं, जिस जिस दिन मैंने अपना फोन साइड में रख के सोने की कोशिश की है, बेटर स्लीप मिली है, बेटर यू नो कॉन्वर्सेशंस रही है। सो आई विल से कि यू ऑल्सो ट्राई दैट। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: भी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

0: एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंकड़ा सामने आया है, मतलब स्टैट्स जिसे आप कहते हो स्टैटिस्टिक्स। आज दुनिया के ऑलमोस्ट हर मेजर कार कंपनी इलेक्ट्रिक फ्यूचर पर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन फ्यूचर सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है, फ्यूचर इंटेलिजेंट भी है। इमेजिन ऐसी कार जो खुद पार्किंग करते, खुद ट्रैफिक समझ ले और मतलब सारी जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करने के लिए पहले ही अलर्ट रहे। साइंस फिक्शन लग रहा है ना सुनने में, पर नहीं यार, रियलिटी बन रहा है और गल्फ कंट्रीज में भी स्मार्ट मोबिलिटी की तरफ ये फास्ट मूव कर रहा है। मुझे लगता है कि 10 साल बाद हम अपनी कार जो है उसको वैसे ही देखेंगे जैसे आज पुराने कीपैड और फोन्स को हम देखते हैं ना। सो आई वॉज लाइक कि यार जब मैं साइंस फिक्शन देखती थी तो मुझे लगता था ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, पर आप सोचिए जो वो मूवी बनाते हैं उनको पहले ही पता होता है कि अगले 10-20 साल या 30 साल या 50 साल बाद एक्चुअली यही सब होने वाला है। सो आप बताइए, अगर आपको चॉइस मिले तो लग्जरी पेट्रोल कार लोगे या लग्जरी इलेक्ट्रिक कार? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, ये है हैप्पी वीकेंड्स, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

थॉट शेयर करना चाहती हूँ। हम सब फोटोज बहुत लेते हैं, लेकिन क्या हम मोमेंट्स भी उतने ही जीते हैं? कभी मतलब बीच जाते हैं और सनसेट से पहले फ़ोन निकल जाता है, कॉन्सर्ट में सिंगर कम स्क्रीन ज़्यादा देखते हैं और फिर घर आकर कहते हैं कि वीकेंड कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। यार ये मैंने खुद नोटिस किया है, मैं कतर में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में गई हूँ। मतलब वीडियो बनाने में आसपास के लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो एक्चुअली कॉन्सर्ट को एंजॉय नहीं कर रहे होते, वो वीडियो बना रहे होते हैं और वो स्क्रीन पे यू नो आर्टिस्ट को देख रहे होते हैं। एंड आई वाज लाइक यार क्यों आप फ़ोन में इतना घुल जाते हो? वीकेंड कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और इसीलिए वीकेंड एक फ़ोटो के लिए बन जाता है। सो आई वाज लाइक कि और एक मेमोरी ज़्यादा बनाइए, क्योंकि यादें क्लाउड स्टोरेज में नहीं दिल में सेव होती हैं। तो फ़ोन को रखिए साइड में और अच्छे से इन्जॉय कीजिए पूरे वीकेंड को। मतलब कुछ लोग तो ऐसे यार खाना आते ही सबसे पहले अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, कोई नई जगह जाते ही सबसे पहले अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है यार दो मिनट रुको, उस जगह को फील तो करो, उस जगह को महसूस तो करो कितनी खूबसूरत है, पर हमसे रुका ही नहीं जाता। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल अप। बाय द वे आप बताइए कि आप भी ऐसा ही करते हो क्या? 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल अप और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर, अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर, एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
4: Cool song.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव.
2: In association with
1: download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
3: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
1: your trusted remittance partner.
4: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

सो बस एक और बात आपसे करनी थी कि आज का जो फ्राइडे इवनिंग है वो यहीं तक थी आपके साथ. वीकेंड ऑफिशियली कल शाम को शुरू हो गया था, कल सुबह जो अलार्म है वो नहीं होगा. सैटरडे को बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है और कई सारे लोगों का बस हाफ डे होता है. सो आपकी मर्जी से आप यू नो अपने फ्राइडे और सैटरडे स्पेंड करो. बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीकेंड किसी अपने को कॉल करिए, फैमिली के साथ डिनर करिए, एक नई जगह एक्सप्लोर कीजिए और सबसे ज़रूरी खुद को भी थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि फिर से संडे आ जाएगा, नया वीक स्टार्ट हो जाएगा और दोबारा कभी वापस ये यू नो ये वाला दिन वापस नहीं आएगा. फिर आप अगले फ्राइडे का इंतजार करोगे. सो विद मी, मैं हूँ मुस्कान, ये रेडियो ऑलिव और आपसे मुलाकात होगी सैटरडे की रात को मिडनाइट लाउंज में खूब सारी नई कॉन्वर्सेशंस और किताबों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. ये है हैप्पी वीकेंड.

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग। रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ऑलिव 106.3

0: 613 FM. You're listening to Club Olive.
1: This is Club Olive.

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
2: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली। फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी चलने को जगह नहीं निकलेगी भाई की सवारी। हाँ थोड़ा टाइम रुक जा कड़ी।